0: दया कृपा संतोख सूजत गंडी सतवट ए जनेऊ जी का हिता पांडे कत नायो टुटे ना मल लगे ना हो जले ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मुलड़ाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्रह्मतिया ओह मुआ ओह चढ़ पाया वे तगा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मियां रात दिन सजी नाल तग कपाहूं कत

गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन ना जाई तोती टिका तै जप माली तान मले शाखाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम तुरका पाई।

जाए, सुचे अगे रखियो कोई ना पिटियो जाए, सुचा होए के जेवे अलग अपन सलो, बहुत ही जस्टिया।

नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होय, फिक्को फिक्का सदिये फिक्के फिक्की सोय, फिक्का दरगे सटिये मो चुका फिक्के पाय, फिक्का मूर्ख्या किए पाना लय सजाए महला पहला।

0: पौड़ी वडी वडा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग नेक न जपन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना अपजर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद चक्र कर चिहन यर भरन जात यर पात नहन जेह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गण जय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत पय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियाता तास चरण ले हृदय बसावा तौ परम गुरु नानक गुण गावा गावौ गुण परम गुरु सुख सागर दुरत निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादिक आत्म रस जिन जानियों कब कल सुजस गावौ गुर नानक राज जोग जिन माणियौ हरणखी कु सच वैण सुनाई जो तौ करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनहो शबीली फिर तैडा मन साधारण दुर्जन से तीन हो रचायो दस विखा मैं कारण ओणी नाही चोणी नाही नाही किसे वे होणी फिर शैल शबीला छड गवायो दुर्मत कर्म विहूणी नाहौ पुली नाहौ चुकी ना मैं नाही दोसा जित हौ लाई तित हौ लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा तारी फिर अवगण तिसके सब गवाए गल से ती लाए सवारी कर्महीन तन करे विनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव रात मुरारी लिख कत हे ना छूटिया खिन खिन फूलनहार बखसनहार बखसल नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविया एह
जनिस सहज सो भय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिव तक समधि नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डठे सच पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सब ना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सब ना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला पहला सतगुर भीख्या दे मैं तू समर्थ दातार हम गर्भ निवारिया

काम क्रोध अहंकार लब लोभ पर जलिए नाम मिले आधार एहनिस नवतन निर्मला मैला कबहू न होए नानक एह बिद छुट्टी नदर तेरी सुख होए महला पहला इको कंत सबाइया जित्ती दर खड़िया नानक कंत रतिया पुछ बतड़िया महला पहला सबे कंत रतिया मैं दोहागण कित मैं तान अवगण इतड़े खसम न फेरे चित

दार मंगत जाच दान हर दिज कृपा कर गुरमुख लेहो मिलाए जान पावे नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत धर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग मह वरत आप हर स्थिति प्रीत कर जग मह वरत आप हर स्थिति प्रीत कर वाहेगुरु जी की फतेह। श्लोक महला पहला।

सलल निवास जैसे मीन की ना कटे रुच दीपक प्रगास प्रीत कटे ना पतंग की कुसुम सुवास जैसे त्रिपत ना मध्य पको उड़त आकाश आस कटे ना बिहंग की कटा कनक हो कटा कन कोर मोर चात्र करी दहुलास नाद बाद सुन रत कटे ना कुरंग की तैसे प्रिय प्रेम रस रसक रसाल संत कटत न त्रिसना।

जैसे मीन की ना कटे रुच, दीपक प्रगास कटे प्रीत ना पतंग की, कुसम सुवास जैसे त्रिपत ना मदपक उड़त आकाश, आस कटे ना बेहंग की, कटा कन कूर मोर चात्र हृदय उलास, नाद बाद सुन रत कटे ना कुरंग की, तैसे प्रेम प्रेम रस रसक रसाल, संत कटत न त्रिसना प्रबल अंग।

0: हसार न जाना तेरी राम, हसार न जाना तेरी राम।
1: एक मन पुरख ध्याए बरदाता।

तुद आगै बिनवता। श्लोक पवन गुरु पाने पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत जगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमिया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमारी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहा।

प्यारी दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाई ब्रह्मा बप तरा, काल पाई शिवजू अवतरा। काल पाई कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रुन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जाब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत ताब देह अपारा। जाब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, ओत पुज खान बहोरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगर। दुष्ट जिते उठवत युत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दो

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखान्यो। दोहरा

प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रेम भगत अपनो नाम दीजै, दयाल अनुग्रह तारी। प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रेम भगत अपनो नाम दीजै, दयाल अनुग्रह तारी। सिमरौ चरण तुहारे प्रीतम, हृदय तुहारी आसा। संत जना पह करौ बेनती, मन दर्शन की प्यासा। बिशरत मरन जीवन हर मिलते, जान कौ दर्शन दीजै। नाम आधार जीवन तन नानक, प्रभ मेरे कृपा कीजै। कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखह दर्श तेरा राम। लाख जिहवा देहो मेरे प्यारे, मुख हरे आराध मेरा राम। करहो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लेव लावह। नानक की बेनंती हर पह, अपना नाम जपावह। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सत गुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। एक बार सत गुर मंत्र सिमरन मात्र,

आए कौडी अगर भाग राखै ताहे गुर सर्ब निदान दान देत है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध नमो नमो नमो नमो नेत नेत नेत है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध नमो नमो नमो नमो, नमो।

कौतक कूड तमाशिया चित न आवसनाउ नानक कोड़ी नरक बराबरे उज्जड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मान्या झूठ समगरी पेख सच कर जान्या काम क्रोध अहंकार फिर है देवान्या सिर लगा जम डंड ता

लागे बिनवता। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात दिवस रात दुविधाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया।

श्लोक राजकपटं रूपकपटं तनुकपटं कुलगर्भतः संचन्त विखया शलं सिदरं

ए खंदड़ों की भुल तुम दिसम सोहना अड नल हंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया पौड़ी चलदिया नाल न चले सो क्यों संजिया तिसका कहो क्या जतन जिसते वंजिया हर बिसरिया क्यों।

प्रभु छोड़ अन लागै नरक समंजिया। हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजिया। प्रभु छोड़ अन लागै नरक समंजिया। हो कृपाल

आपिनी आप साजी आपिनी रचियो नाओ दुई कुदरत साजी करासन जिठो चाओ दाता करता आप तुस देवे करे बसाओ तू जानो सबसे दिल ऐसे जिंद कुआओ कर आसन जिठो चाओ कर आसन जिठो चाओ।

0: जावे पू सगल्या पो लिख्या सिरलेख नानक निरभउ निरंकार
1: नानक निरभउ निरंकार और किते राम रवाल कीतियां कन कहानियां किते विद विचार इत नचे मंगते किड़मर पूरे तार बाजारी बाजार मैं कडे बाजार गावे राडे राणियां बोले अल्प तार लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जितन पये नानक से तन हो वैशा ज्ञान नंगली ढूंढी है कथना करड़ा सार कर मिले तपाई है और हिकमत हुकम खुआर पौड़ी नद करे जे अपनी।

निर्भव निरंकार सच नाम जाका किया सकल जहान। सेवक सेवे करन चढ़ाओ पिनी रंजना मन चा, सिखी सिख्या गुरु।

मस्तक लाइए, कूड़ा लाल छड़िए हो एक मन अलग ते आइए, पालते वे हो पाइए जेवे ही कार कमाइए, जो होवे पूर्व लिखिया ता तू उतना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए।

परमताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को काहे जियो। सुथरचित भगत हित पेख तरयो हर नाक सरयो नख बिदार जियो। संख चकर गदा पदम आप आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही।

ब्रह्मा विष्ण श्रेतगण तिनको मोह पया मन मद का 84 लाख जोन उपाई रिजक दिया सबू को तदका सेवक कै भरपूर जुग जुग वहाँ गुरु तेरा सब सदका सेवक कै भरपूर जुग जुग।

0: का बड़ा तमाशा, गुरमुख संगत सब विचार, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन प्याल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना, माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का कार निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाये परमारथ, सत संगत से ते मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना।
2: अगम अनंत अनादि, आदि जिस कोई न जाने, शिव ब्रंच तर ध्यान, नितै जिस

निर्मल नाम सुधा परपूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर था आत बड, सो पर सदा सब बिदरत नागर। संत मराल करे कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। काल युग दूरत दूर कर बेको, दर्शन गुरु सगल।

हो वैस फतख समधि नूर अर सोह कुर सोह चटी तद डठे सच पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठिया सोई है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठिया सोई है सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित हुण खसम ना पाया पौड़ी छोड़ की फिर हाथ ना आवे अहला जन्म गवाया त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित हुण खसम ना पाया पौड़ी छोड़ की फिर हाथ ना आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ ना दे लेवला गणा जिने हर के चरण विसारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे

रहम तू दयाल दया पत दाता क्या एह जंत विचारे मुकत बंद सब तुझते होए ऐसा आँख बखाने गुरमुख हो वैसो मुकत कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुकत जिस एक लिव लागे सदा रहे हर नाले तेन की गहन गत कही न जाए सच्चे आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कहिए ना उरवार ना पारे जिसनो नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माहे निस्तारे नानक पाग हो जिस मस्तक काल है मार बिदारे जिसनो नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद ना। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा

जियो। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिन्हां जिन्हां गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिन्हां दी अरदास। समूह संगत अते टहलियां दी अरदास। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नूं अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है। दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद। संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। सुख होवे ना